गुरबाणी का शब्द तुसी सुनिया जिंदगी जीवन लई सानू साडे सारे दिशा निर्देश सानू साडे अमीर विरासत च मिलते ने दुनिया बदल रही है बदलती दुनिया दे असी हामी हाँ क्योंकि असी सत समुद्रों पार आ के इस बदलती दुनिया दे विच अपना कदम रखिया एक सोहना समाज बनाने दे लई वरिया तो सियाने बंदिया ने कई बहसा कीतियां कई तजर्बे किए ज्यों ज्यों मनुखी आबादी वधदी गई उहदे नाल नाल उसने अपने तजर्बियां दे विच अपने आप नूं इकट्ठ नूं ग्रुह नूं ग्रुप नूं किवें रखणा आ उस नूं सांभण दे तौर तरीके भी बनाए गए अजोके सोशल मीडिया दे जमाने दे विच अक्सर गल्लां बातां इन्नी तेज़ी दे नाल बदल जांदियां ने कि कई वारी सानू सोचण ते मजबूर होना पैंदा है कि ये वर्तारा साडे आले दुआले की वापर रहा है अज की खास गलबात इन्हां वर्तारियां ते जिंदगी जीउण लई किताबां विचले लिखे विचार की कहिंदे ने ते सोशल मीडिया दा फैले विचार तंदां तोड़दे नीतियां नवें संकल्प घाड़े नवें अंदोलन बन दियां तैयारियां जिथों इथों दियां स्थानक सरकारां डरदियां नज़र आउंदियां उहदे बारे खास गल करांगे आजादी संकल्प बनाम काकरोच पहला सैगमेंट खास गलबात जिंदगी जीवन दे लई जो सानू अकीदे ने जो सानू लीहां पईयां ने उन्हां च कुछ विचार गल्लां ओ जो साडे अंदर ने जिन्हां ते विचार कीता जाणा चाहीदा है इन्हां दिनां दे विच इक किताब नज़री पई किताब बहुत पुरानी है अरस्तू दे लिखिया होया सियासत की है पॉलिटिक्स उहदे कुछ विचार कुछ गल्लां जो मैनूं लग रिहा कि सानूं आले दुआले वापर रहियां घटनावां नूं सानूं बहुत प्रभावित करदियां ने साडी होणी तां होणा कई वारी असीं किस्मत ते छड्ड दिंदे आ पर असीं जिस तरह जिस थां जिस धरती जिस मुल्क ते रहिंदे आ उत्थे आले दुआले साडा लोकां नाल बहणी खलौणी विचार सानूं दूर तक प्रभावित करदे ने मनुख एक राजनीतिक जीव है मैन इज़ ए पोलीटिकल एनीमल ये गल असीं अक्सर कहिंदे सुणदे हाँ मुख विचार अरस्तू दा मनना है कि कुदरत ने मनुख नूं समाज विच रहण लई बनाया है कोई भी इंसान इकला रह के अपना पूरा विकास नहीं कर सकता वो ये भी कहिंदे ने कि जिहड़ा मनुख या समाज या राज तो बिना रह सकता है वह या तो पशु है तो या फिर रब है सो साडी होणी जदों असीं जंगलां च रहिंदे सी उदों वी असीं समूहां च रहिंदे सी कुदरती अंग संग आले दुआले दे ढंग तरीके नाल रहण लई सानूं इकट्ठे होकर लड़ना पैंदा सी ते राज दी शुरुआत दे लई परिवार दा इक धुरा आ जिहड़ा कि फैमिली साडा यूनिट आ पहिलां परिवार बणे इन्हां परिवारां दे समूह तों कबीले कबीलियां तों पिंड ते इन्हां पिंडां नूं मिला के राज बणे राज दा मकसद सिर्फ जिउंदे रहना नहीं राज दा मकसद एक चंगी नैतिक जिंदगी देना भी है राज लैण दी राज करन दी राज खोण दे संकल्प दियां कहानियां इतिहास च भरियां पईयां ने पर चंगी जिंदगी जीउण दी नैतिकता आधार दियां गल्लां ते है पर लागू करन वेले साडे अंदरले लालच हौमे सुभा साडा मानसिक तनाव ये बहुत कुछ पैदा करता है किसी राज दे देशवासी होना किसी नूं देश द्रोही कह देना जिहड़ा कि अजकल लफ्ज़ बहुत वरत्या जा रहा है पर असी नागरिक कौन आ कि सिटीजनशिप एक डिग्री लैके सर्टिफिकेट लैके असी सिटीजन बन जाने हैं अरस्तू दे मुताबक हर वो बंदा नागरिक नहीं जो किसी देश विच रहिंदा है नागरिक सिर्फ वो है जो राज दे कानून बनाउण अते न्याय दे कम्मां विच हिस्सा लैंदा है ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹੋ ਅਰਸਤੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਵੀ

0: जी हाँ एक गीत सी एक खास फिल्म जी हाँ गीत सी फिल्म दमादम मस्त कलंदर एक गीत फिल्म दी सारी कहानी दा मोड़ है दमादम मस्त कलंदर फिल्म दा सीधा संबंध आस्ट्रेलिया नाल है इस फिल्म दे लगभग बहुत सारी कास्ट जिहड़ी हीरो ते होर बहुत सारे कलाकार आस्ट्रेलिया तो सन मेलबर्न तो सैमिकल ने एक खास किरदार एक विलन का किरदार निभाया किंग बी चौहान सिडनी तो इस फिल्म नू लेके गए कहानी आस्ट्रेलिया दे संघर्ष भरी जिंदगी नाल जुड़ती है कहानी इत्थों दी संघर्ष जिंदगी विच असी पिछे कुछ गल्लां नहीं दसते साडे मापे महसूस करते ने साडे बच्चे पढ़ाई दे नाल नाल इत्थे वड्डे वड्डे अफसर बन के उत्थे निकले ने असी घर वापसी की गल करते हैं असी रिवर्स माइग्रेशन की गल करते हैं पर सानू पता है कि जो आस्ट्रेलिया च रह के चला जाता है उधर ही वापस जाना बहुत औखा पर साढ़े परदेसी दिलों की तांग है कि असी वापस जाना लोचते हैं दमादम मस्त कलंदर फिल्म दे विच फिल्म का हीरो कलंदर सिंह पंजाब सरकार की इस नीति आधारित के इतने बहरले लोग आके भी कम करे साड़िया डिग्रिया क्वालिफिकेशन उत्थे बराबर होनगियां पंजाब पुलिस विच भर्ती हुंदा है पंजाब विच जो उत्थे वापर रहा है फैक्ट्रिया का गंदा पानी इलाकों नूं प्रदूषित कर रहा है इहो जिहियां घटनावां सच्चियां गल्लां ने लोग संघर्ष कर रहे ने सरकारां उन्हां ते ध्यान क्यों नहीं दिंदियां इस दा सीधा मसला उत्थे सामने आउंदा है नकली शराब नशे की सप्लाई सरकार पुलिस नाल मिल के किवें करदी है इस बारे गल्लां उत्थे इस कहानी सारे आउंदियां ने शायद इहो ही गीत पंजाब से हाँ कमल गरेवाल होना दा सुनिया फिल्म सिनेमा जो समाज विच लुकिया है जदों नहीं दसेगा तो फिर सिनेमा कहदा जरूरी नहीं हुंदा कि फिल्मां उही होण जो असी नंगी अख नाल वेखदे हाँ जरूरी नहीं हुंदा कि फिल्म सिनेमा कहानी वह कुछ दसे जो लगभग सच होया कहानी ने नाटकी अंदाज लेना हुंदा है कहानी ने बदलाव रूप करने हुंदे आ संवाद पैदा करता है इस कहानी ने संवाद पैदा किए ने सैमीगेल नूं मुबारकां उसकी दिख बहुत पसंद आई उसका वैलीपुणा उस अखा विच नज़र आता है किंग बी चौहान नवा कलाकार है ज़्यादा कॉमेडी करता है ये गल्लां उसके किरदार विच भी नज़र आउंदियां ने सब तो खुशी गल पिंड कादियां तो उठ के मेलबर्न पहुँचया पाहुल छोटिया छोटिया रीलां बनाउंदा रीयल स्क्रीन ते जा वज्जिया रीयल स्क्रीन ते फिल्मी अंदाज विच गवलिया जिस तरह के जज्बात एक्सप्रैशन उहदी सधारण दिख विच नज़र आउंदे ने लगभग कुदरती नैचुरल दिख उहदे विच नज़र आउंदे ने फिल्म विच बहुत सारे कॉमेडियन भी लए गए पर मैं समझदा कि तजर्बा ठीक ठीक रहा क्योंकि जदों कॉमेडियन आउंदे ने ते असी एक्सपैक्ट करते हैं कि वह अपनी पुरानी दिख लैके आउणगे जदके फिल्म दे विचों एक वक्रे पात्र दे तौर ते हुंदे आ कहानी की स्क्रिप्ट और डायरेक्शन वालों वह पात्रां दे कोलों कमेडी कहाउण दी गल कीती गई पर वह किते किते कहानी नाल बेइंसाफी करते नज़र आए फिल्म च तकनीकी पक्ष पंजाब सिंह गाने दे तकनीकी पक्ष बहुत वधिया ने फिल्म दा दृष्टिकोण नज़रिया एंगल पेशकारी लाशां दा लैके जाना पुलिस वाले दा किरदार दा उत्थे सपोर्ट करना उह सिंबोलिक गल्लां जिहड़ियां उह बहुत मायने रखदियां ने फिल्म अखीर दे विच क्लाइमैक्स हासा पाउण दी कोशिश कीती पर ज़्यादा सीरियस टैक्नीक ना हो सकदा सी दमादम मस्त कलंदर एक होर खूबी जो सानू इत्थे वधिया लगी देखो पंजाबी सिनेमा इत्थे फिल्मां लगदियां ने अद्धे क हाल खाली रहिंदे आ दमादम मस्त कलंदर फिल्म पूरे मेलबर्न विच एक जगह लगी हाईलैंड हॉयट्स दे विच दो शो दो दिन रखे गए तो मैं समझदा कि सफल तरीका सी जिन्हां ने वेखणी सी ਉਹ ਖਾਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਫਿਲਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਆਵੇਗੀ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਕਹਾਣੀ ਚੰਗੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਚੰਗੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀ ਹਾਂ ਦਮਾਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਫਿਲਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਮਲ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਗਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੱਟ ਕਿਵੇਂ
1: ਚੱਕਵੇਂ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਗੀਤ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡੇ।

प्रोग्राम का तीसरा सैगमेंट असी ब्रांडेड संगीत की गल करते हैं बदल रही दुनिया बदलता म्यूजिक सिद्धू मूसेवाले का गीत भी अजोके युग में साढ़े सामने चलता रहा जो सोशल मीडिया से विरोध भावनावान दल हों तो यह गीत अक्सर वक् वक् बैकड्रॉप के यूज़ करके लोग साढ़े सामने लैके आते हैं बदलती जमाने का बदलते संगीत का

सच बोलेगा ते मिलो 295। आखिर ये सारा कुछ उसनों क्यों करना पिया, क्यों कहना पिया, किस तरह गल करनी पई, शायद इसकी भी गल असी अक्सर सोचते रहने हैं। सिद्धू मूसेवाला पूरी दुनिया के अपनी मौत तो बाद ज़्यादा छाया, लोगों की सिंपति जवाना की अज भी वो है, वो आवाज़ के कलोन बन के वह सच्चिया गल् अज रूबरू हो रही हैं। हर एक बोल के उत्ते ध्यान करना मंगता है। सिद्धू मूसेवाले का यह विरोध, इस सच बोलन का पहरा देन का हीला कि उसकी मौत का कारण बनया, पर उसका विरोध और जिसन पसंद वही गिनती दे गैर पंजाबी जबान के लोगों ने भी किया, उस दिया इस सच बोलन की सिंपति सोशल मीडिया राही ही होया। मेरिया नज़र जो वर्तारे सोशल मीडिया में होंगे ने होंगे रहे ने, वो किस तरह के किवें होंगे रहे ने, इस दी मिसाल देखने दे लई सानू इन्हां सारे वर्तारियां नू एक सांझे नली विच परो के देखना चाहिए। ये साढ़े तुहाडे दी गल्लां शायद नहीं, अजोकी दुनिया के उन्हां जवानां दा गल कहण दा हक है, जिथे गल मैने रख दी है, व्यक्ति बंदा नहीं, मैने रखदा है पर इन्ना नहीं। जे विचार चंगे ने गल चंगी है, गल सुलझी है तो अगे निकले, नहीं तो सरकारां कोलों एक दबया दबाया बनया बनाया तरीका है, लोगों नू एक ऐसी नशे की आदत पा दवो, स्पोर्ट्स सिनेमा नाच गाना रिक्रिएशन एंटरटेनमेंट एक बहुत वड्डी गिनती दे लोगों नू इहदे विच पला के आपां एक नवी पीढ़ी नवे पासे लैके जा सकते हैं। बदलदी दुनिया का ब्लेंडड नवा गीत प्रोग्राम का आखिरी गीत होगा, इस नाल ही मैं इजाजत वाधा घाटा माफ़ी, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। दम मारो दम पुराना गीत ब्लेंडेड सेक्शन गला जो गल पसी पड़छे विकी सकते।